0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण विषय है देवदूत प्रार्थना के पूर्व संत पापा लियो का दिया गया संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो 14वें ने पवित्र त्रित्वमय ईश्वर महापर्व के अवसर पर तीर्थ यात्रियों और विश्वासियों के संग देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। संत पापा ने संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में जमा हुए सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa, si è concluso il tempo pasquale.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात और शुभ रविवार। हमने विगत रविवार पेंतेकोस्त के समारोह से पास्का अवधि की समाप्ति की। आज हम त्रित्वमय ईश्वर के रहस्य का महोत्सव मनाते हैं, जो हमें अपने जीवन यात्रा पर चिंतन करने का एक अवसर प्रदान करता है। हम ईश्वरीय जीवन से शुरू करते हैं, जो हमें यीशु ख्रिस्त में दिया गया है। यह जीवन हमारा गतिशील, अविखंडनीय और विश्वास में एकता का एक स्वरूप है, जो हमें आकर्षित करता है। वास्तव में हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा उडेला गया है, जो पिता और पुत्र को एकता में रखते हैं। इस भांति कलीसिया हमारे लिए एकता का एक संस्कार बनती है, एक स्थल जहां हम स्वर्ग और पृथ्वी के मिलन का पूर्वाभास, एक मिलन स्थल प्रेम और जीवन के रूप में अनुभव करते हैं। संत पापा लियो ने कहा कि आज का सुसमाचार हमारा परिचय निकोदेमुस से कराता है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो उस रहस्यमय गुरु को बेहतर रूप से पहचानने को उत्सुक हैं और जो उन्हें सवाल करते हैं। निकोदेमुस उनसे रात

0: में मिलने जाते हैं जिससे उन्हें कोई भी ना देखे। प्रभु यीशु उनका स्वागत करते और उनकी गंभीरता भरी खोज का उत्तर देते हैं। यीशु निकोदेमुस को यह सुझाव देते हुए आश्चर्यचकित करते हैं कि एक वयस्क के लिए पुनर्जन्म लेना संभव है, और वे उन्हें इस बात का अनुभव करने हेतु अग्रसर करते हैं कि वे ईश्वर के जीवन से अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं।
1: Gesù parlò a Nicodemo dello Spirito Santo, illuminò la sua notte con la verità che nella festa di oggi risuona in tutte le nostre chiese.
0: जब यीशु पवित्र आत्मा की चर्चा करते हैं, निकोदेमुस का आंतरिक जीवन सत्य से ज्योतिर्मय हो जाता है। उसी सच्चाई से आज पूरी कलीसिया में मनाए जाने वाला समारोह गूंजित होता है। ईश्वर ने दुनिया को इतना प्रेम किया कि उन्हें अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो लेकिन अनंत जीवन को प्राप्त करे। और पुनः ईश्वर ने अपने पुत्र को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि वह उसे दोषी करार दे, लेकिन इसलिए भेजा है कि दुनिया उनके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा ने कहा, ईश्वर के रहस्य पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में हम निवास करते हैं, जैसे कि निकोदेमुस ने यीशु की उपस्थिति में शांति का अनुभव किया। ईश्वर का जीवन अपने में शानदार और आकर्षित करने वाला है। यह हमारे हृदयों को शांति प्रदान करता है जिसे हम बहुधा अशांत पाते हैं, और यह हमें अपने भाई बहनों के संग पवित्र आत्मा की खुशी में मिलन हेतु मदद करता है। त्रित्वमय ईश्वर हमें हर चीज को और हर एक से प्रेम करने में मदद करते हैं। हम अपने में इस बात को पाते हैं, हर प्राणी एकता में संबंध और मिलन में बने रहने के लिए बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर हम इस तथ्य को समझते हैं कि विभाजन, अलगाव और विभिन्नता की उपेक्षा विध्वंस, उदासी और दुनिया में उजाड़ लाती है। संत पापा ने कहा,
1: Nicodemo faceva parte del Sinedrio, il consiglio dei capi di Israele.
0: Nicodemus सदुक्यों के दल का एक सदस्य था, इसराइल के महापुरोहितों की सभा का एक अंग। जब वह सदुक्यों के बीच में यीशु के संबंध में तिरस्कार भरी बातें सुनता है, तो वह सभों से इस बात हेतु निवेदन करता है कि दोषारोपण करने के पूर्व वे हर एक की बातों को सुने। उन्होंने यीशु ख्रिस्त में पवित्र आत्मा से मिलने वाली एकता को प्राप्त किया था, जो उनके हृदय को नई सच्चाई और नवीनता हेतु खोलता है। जो कोई आत्मा का स्वागत नहीं करता वह जल्द ही पुराना हो जाता है। वह उदासी, अकेलेपन का अनुभव करता और उसका हृदय आनंदहीन रहता है। इसके बदले में, प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हमारे लिए वह महोत्सव है। ईश्वर का महोत्सव हमारा त्यौहार भी है। इसी कारण कुरिन्थियों के नाम अपने पत्र में संत पौलुस यह कहते हुए लिखते हैं, आनंदित हों, पूर्णता को प्राप्त करें, एक दूसरे को प्रोत्साहन दें, शांति में निवास करें और ईश्वर का प्रेम और शांति आपके साथ सदा बनी रहे। और अब देवदूत प्रार्थना के संग हम अपने को कुंवारी मरियम की ओर उन्मुख करते हैं। उन्होंने दिव्य इच्छा को हाँ कहा। उनकी तरह पवित्र त्रित्वमय ईश्वर के प्रेम के प्रति हमारा हाँ फलहित हो। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों के संग देवदूत प्रार्थना का पाठ किया और सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
1: Dominus vobiscum.
2: Ecum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Et son nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui feci celum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा लियो ने सभों का पुनः अभिवादन करते हुए कहा,
1: Cari fratelli e sorelle, in questo mese di maggio da tutta la Chiesa si è elevata una corale invocazione di pace.
0: प्रिय भाइयों एवं बहनों, इस मई के महीने में पूरी कलीसिया की ओर से शांति हेतु एक विशेष अपील की आवाज उठती है, खासकर रोजरी प्रार्थना के माध्यम से, जो कड़ी के रूप में युद्ध से पीड़ितों को कुमारी मरियम के हाथों में सुपुर्द करना है। दिव्य विवेक उन अधिकारियों की अंतरात्मा को प्रज्वलित करे, जिससे वे न्यायपूर्ण शांति स्थापना हेतु कार्य कर सकें। संत पापा ने कहा, आज इटली 25वां राहत दिवस मनाती है। मैं कृतज्ञ भरे हृदय से उन लोगों को अपना सामीप्य और प्रोत्साहन प्रदान करता हूँ, जो बीमारों के निकट रहते और उनकी देखरेख करते हैं। इसके उपरांत संत पापा ने रोम के तीर्थ यात्रियों के अलावे विश्व के विभिन्न देशों से आए हुए विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए सबों को रविवार ये मंगल कामनाएं अर्पित की।
1: Auguro a tutti una buona domenica!

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने सोमवार 1 जून को वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में पोंटिफिकल मिशन संस्थाओं की आम सभा के 150 प्रतिभागियों से मुलाकात की, जो अपनी वार्षिक आम सभा के लिए रोम आए हुए हैं। संत पापा ने उनका सहर्ष स्वागत करते हुए कहा कि यह साल सच में मिशनरी मील के पत्थरों से भरा है। यह साल संत पापा पियूस 11वें द्वारा अक्टूबर के आखिरी से पहले वाले रविवार को विश्व मिशन रविवार के तौर पर मनाने की 100वीं सालगिरह मनाई है, जिसे धर्म के प्रचार के लिए गठित पोंटिफिकल संस्था के अनुरोध पर शुरू किया गया था। 100 सालों से यह दिन प्रार्थना, मनन, चिंतन और कलीसिया के सुसमाचार प्रचार के मिशन में योगदान देने के लिए अलग रखा गया है, खासकर उन इलाकों में जहां सुसमाचार की घोषणा अभी शुरू ही हुई है और जहां कलीसिया अभी नई है। इस दिन हर कैथोलिक समुदाय को प्रार्थना करने और पहले सुसमाचार प्रचार के इलाकों में मिशनरी कोशिशों और नई कलीसियाओं के समर्थन के लिए आध्यात्मिक और आर्थिक सहायता देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। विश्व मिशन रविवार के दिन जमा हुए फंड की वजह से धर्म के प्रचार के लिए गठित पोंटिफिकल संस्था 1130 से ज्यादा कलीसिया के इलाकों को जरूरी मदद दे पा रही है। इससे उन्हें जरूरी गिरजाघरों को बनाने और अलग अलग मिशनरी कामों में मदद मिल रही है। वे रोम में स्थित 5 कॉलेजों के प्रबंधन को भी समर्थन देते हैं, ताकि पुरोहितों, धर्म बहनों और धर्म बंधुओं को लगातार ट्रेनिंग दी जा सके, जो पढ़ाई के लिए रोम शहर आते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी स्थानीय कलीसियाओं में वापस जाते हैं, जहां वे अपना कीमती योगदान देते हैं। फिर संत पापा ने कहा कि इस साल धन्या पाओलो मान्ना द्वारा पोंटिफिकल मिशन यूनियन की स्थापना की 100वीं सालगिरह भी है, जिसे संत पापा पियूस 12वें ने पोंटिफिकल घोषित किया था और संत पापा पॉल 6ठम ने इसे दूसरी पोंटिफिकल मिशन संस्थाओं की आत्मा बताया था। संत पापा ने सभी को इसके मिशन में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद संत पापा ने खुशी के साथ अमेरिका में पोंटिफिकल मिशन संस्थाओं के जाने माने राष्ट्रीय निदेशक आदरणीय महाधर्माध्यक्ष फुल्टन जे शीन को भी याद किया, जिन्हें इस साल 24 सितंबर को संत लुइस मिसौरी में धन्य घोषित किया जाएगा। महाधर्माध्यक्ष शीन विश्वास, उम्मीद और प्यार के एक प्रकाश थे, जो दशकों तक रेडियो और टेलीविजन मीडिया के जरिए चमकते रहे। उनके ब्रॉडकास्ट ने लाखों लोगों को सुसमाचार की उम्मीद से छुआ और उनकी कोशिशों और पहलों का नतीजा यह हुआ कि पहले सुसमाचार प्रचार वाले इलाकों में कलीसियाओं को बहुत ज्यादा आध्यात्मिक और आर्थिक मदद मिली। संत पापा ने कहा कि इस साल के विश्व मिशन दिवस की थीम मसीह में एक, मिशन में एकजुट, विश्वासियों की एकता पर जोर देती है और इस वैश्विक समारोह की 100वीं वर्षगांठ को दिखाती है। यह कलीसिया के सभी सदस्यों को मसीह में गहरी संगति और उनके प्यार की दिव्य मिशन में पूरी सहभागिता का आह्वान करता है। और संत पापा लियो ने विल्ला नाजरे समुदाय का वाटिकन में स्वागत किया और इसके सदस्यों को युवाओं को बौद्धिक, नैतिक और वित्तीय मदद देने के लिए प्रोत्साहित किया, जिन्हें विश्वास, पढ़ाई, व्यवसाय और जिंदगी के बीच, खासकर मन और आत्मा के बीच एकता पाने के लिए ज्ञान और मार्गदर्शन की जरूरत है। 80 साल पहले दूसरे विश्व युद्ध के बाद कार्डिनल डोमेनिको टार्डिनी ने रोम के उस समय के नए शहरी इलाके में उम्मीद की एक लैब के तौर पर विल्ला नाजरेत की स्थापना की थी। दशकों बाद भी विल्ला नाजरेत आस्था, संस्कृति और दान के बीच जरूरी बातचीत को बढ़ावा दे रहा है, खासकर सबसे जरूरतमंद युवाओं की सेवा में। 30 मई को अपनी सालगिरह मनाते हुए समुदाय ने कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन की अध्यक्षता में पवित्र मिसा समारोह मनाया। उसके बाद वाटिकन के आशीर्वाद भवन में संत पापा लियो 14वें से मुलाकात की। प्रतिभागियों का अभिवादन कर संत पापा लियो 14वें ने विल्ला नाजरेत की शुरुआत को याद किया, जिसे उन लोगों को पढ़ाई के मौके देने के लिए बनाया गया था जो प्रतिभा और अच्छी नीयत से भरे थे, लेकिन जिनके पास पढ़ाई का कोर्स करने के लिए जरूरी साधन नहीं था।
संस्थापक समझते थे कि स्थायी शांति को बढ़ावा देने के लिए युवा लोगों को ऐसे नेता बनना जरूरी है जो अच्छा काम करें और उन्हें पारिवारिक जीवन, पढ़ाई, आराम और व्यावसायिक कार्यकलापों में सुसमाचार के मूल्यों को जीने के लिए सही साधन से लैस होना जरूरी है। संत पापा ने हाल के विश्व पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास का भी जिक्र किया। इंसान को जो चीज बचाती है वह बढ़ी हुई आत्मनिर्भरता नहीं है, बल्कि एक ऐसा रिश्ता है जो आजाद करता है, एक ऐसा मेलजोल जो बदल देता है। और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें एक और बाबिल का मीनार नहीं बल्कि ईश्वर का शहर बनाना चाहिए, जिसे प्यार और दुनिया भर में भाईचारे का सहारा मिले। और शनिवार 30 मई की शाम को दुनिया भर के मुख्य मरियम तीर्थालयों में उपस्थित विश्वासियों के साथ मिलकर संत पापा लियो 14वें ने वाटिकन उद्यान के लूर्द ग्रोटो में रोजरी के आनंद के भेद की प्रार्थना की। खास तौर पर उन लोगों को याद किया जो युद्ध और हिंसा से प्रभावित इलाकों में रहते हैं। संत पापा ने वाटिकन उद्यान में मौजूद विश्वासियों और दुनिया भर से जुड़े सभी लोगों से कहा कि वे अपने दिलों को तैयार करें ताकि प्रार्थना के जरिए हम इतिहास की घटनाओं का मतलब समझ सकें और परमेश्वर की कृपा को हमें रास्ता दिखाते और संभालते हुए देख सकें। संत पापा ने जोर देकर कहा, शांति कोई सिद्धांत नहीं है जिसे लैब में टेस्ट किया जाए, ना ही कोई भोला भाला भ्रम है, ना ही कोई ऐसा मामला है जिसे सिर्फ अपने फायदे के लिए ही हासिल किया जाए, बल्कि इसे सच्चे दिल से खोजना चाहिए। यह रोज रोज की प्रतिबद्धता है। शांति न्याय और प्यार से आती है। यह वह तालमेल है जो परिवारों, लोगों, समुदायों और देश को एक साथ लाता है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय है देवदूत प्रार्थना के पूर्व संत पापा लियो का दिया गया संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो चौदहवें ने पवित्र त्रित्वमय ईश्वर महापर्व के अवसर पर तीर्थ यात्रियों और विश्वासियों के संग देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। संत पापा ने संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में जमा हुए सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa, si è concluso il tempo pasquale.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात और शुभ रविवार। हमने विगत रविवार पेंतेकोस्त के समारोह से पास्का अवधि की समाप्ति की। आज हम त्रित्वमय ईश्वर के रहस्य का महोत्सव मनाते हैं, जो हमें अपने जीवन यात्रा पर चिंतन करने का एक अवसर प्रदान करता है। हम ईश्वरीय जीवन से शुरू करते हैं, जो हमें यीशु ख्रिस्त में दिया गया है। यह जीवन हमारा गतिशील, अविखंडनीय और विश्वास में एकता का एक स्वरूप है, जो हमें आकर्षित करता है। वास्तव में हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा उडेला गया है, जो पिता और पुत्र को एकता में रखते हैं। इस भांति कलीसिया हमारे लिए एकता का एक संस्कार बनती है, एक स्थल जहां हम स्वर्ग और पृथ्वी के मिलन का पूर्वाभास, एक मिलन स्थल प्रेम और जीवन के रूप में अनुभव करते हैं। संत पापा लियो ने कहा कि आज का सुसमाचार हमारा परिचय निकोदेमुस से कराता है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो उस रहस्यमय गुरु को बेहतर रूप से पहचानने को उत्सुक हैं और जो उन्हें सवाल करते हैं। निकोदेमुस उनसे रात में मिलने जाते हैं, जिससे उन्हें कोई भी ना देखे। प्रभु यीशु उनका स्वागत करती और उनकी गंभीरता भरी खोज का उत्तर देते हैं। यीशु निकोदेमुस को यह सुझाव देते हुए आश्चर्यचकित करते हैं कि एक वयस्क के लिए पुनर्जन्म लेना संभव है, और वे उन्हें इस बात का अनुभव करने हेतु अग्रसर करते हैं कि वे ईश्वर के जीवन से अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं।
2: Gesù parlò a Nicodemo dello Spirito Santo. Illuminò la sua notte con la verità che nella festa di oggi risuona in tutte le nostre chiese.
1: जब यीशु पवित्र आत्मा की चर्चा करते हैं, निकोदेमुस का आंतरिक जीवन सत्य से ज्योतिर्मय हो जाता है। उसी सच्चाई से आज पूरी कलीसिया में मनाए जाने वाला समारोह गूंजित होता है। ईश्वर ने दुनिया को इतना प्रेम किया कि उन्हें अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, लेकिन अनंत जीवन को प्राप्त करे। और पुनः ईश्वर ने अपने पुत्र को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि वह उसे दोषी करार दे, लेकिन इसलिए भेजा है कि दुनिया उनके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा ने कहा, ईश्वर के रहस्य पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में हम निवास करते हैं, जैसे कि निकोदेमुस ने यीशु की उपस्थिति में शांति का अनुभव किया। ईश्वर का जीवन अपने में शानदार और आकर्षित करने वाला है। यह हमारे हृदयों को शांति प्रदान करता है, जिसे हम बहुधा अशांत पाते हैं, और यह हमें अपने भाई बहनों के संग पवित्र आत्मा की खुशी में मिलन हेतु मदद करता है। त्रित्व में ईश्वर हमें हर चीज को और हर एक से प्रेम करने में मदद करते हैं। हम अपने में इस बात को पाते हैं, हर प्राणी एकता में संबंध और मिलन में बने रहने के लिए बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर हम इस तथ्य को समझते हैं कि विभाजन, अलगाव और विभिन्नता की उपेक्षा विध्वंस, उदासी और दुनिया में उजाड़ लाती है। संत पापा ने कहा,
2: Nicodemo faceva parte del Sinedrio, il consiglio dei capi di Israele.
1: Nicodemus सदुक्यों के दल का एक सदस्य था, इसराइल के महापुरोहितों की सभा का एक अंग। जब वह सदुक्यों के बीच में यीशु के संबंध में तिरस्कार भरी बातें सुनता है, तो वह सभों से इस बात हेतु निवेदन करता है कि दोषारोपण करने के पूर्व वे हर एक की बातों को सुने। उन्होंने यीशु ख्रिस्त में पवित्र आत्मा से मिलने वाली एकता को प्राप्त किया था, जो उनके हृदय को नई सच्चाई और नवीनता हेतु खोलता है। जो कोई आत्मा का स्वागत नहीं करता, वह जल्द ही पुराना हो जाता है। वह उदासी, अकेलेपन का अनुभव करता और उसका हृदय आनंदहीन रहता है। इसके बदले में, प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हमारे लिए वह महोत्सव है। ईश्वर का महोत्सव हमारा त्यौहार भी है। इसी कारण कुरिन्थियों के नाम अपने पत्र में संत पौलुस यह कहते हुए लिखते हैं, आनंदित हों, पूर्णता को प्राप्त करें, एक दूसरे को प्रोत्साहन दें, शांति में निवास करें और ईश्वर का प्रेम और शांति आपके साथ सदा बनी रहे। और अब देवदूत प्रार्थना के संग हम अपने को कुंवारी मरियम की ओर उन्मुख करते हैं। उन्होंने दिव्य इच्छा को हाँ कहा। उनकी तरह पवित्र त्रित्व में ईश्वर के प्रेम के प्रति हमारा हाँ फलहित हो। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों के संग देवदूत प्रार्थना का पाठ किया और सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
2: Dominus vobiscum.
3: Cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum,
3: ex nunc et usque in saeculum,
2: adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: qui feci celum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा लियो ने सभों का पुनः अभिवादन करते हुए कहा,
2: Cari fratelli e sorelle, in questo mese di maggio da tutta la Chiesa si è elevata una corale invocazione di pace.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, इस मई के महीने में पूरी कलीसिया की ओर से शांति हेतु एक विशेष अपील की आवाज उठती है, खासकर रोजरी प्रार्थना के माध्यम से, जो कड़ी के रूप में युद्ध से पीड़ितों को कुमारी मरियम के हाथों में सुपुर्द करना है। दिव्य विवेक उन अधिकारियों की अंतरात्मा को प्रज्वलित करे, जिससे वे न्यायपूर्ण शांति स्थापना हेतु कार्य कर सकें। संत पापा ने कहा, आज इटली 25वां राहत दिवस मनाती है। मैं कृतज्ञ भरे हृदय से उन लोगों को अपना सामीप्य और प्रोत्साहन प्रदान करता हूँ, जो बीमारों के निकट रहते और उनकी देखरेख करते हैं। इसके उपरांत संत पापा ने रोम के तीर्थ यात्रियों के अलावे विश्व के विभिन्न देशों से आए हुए विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए सबों को रविवार ये मंगल कामनाएं अर्पित की।
2: Auguro a tutti una buona domenica!

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने सोमवार 1 जून को वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में पोंटिफिकल मिशन संस्थाओं की आम सभा के 150 प्रतिभागियों से मुलाकात की, जो अपनी वार्षिक आम सभा के लिए रोम आए हुए हैं। संत पापा ने उनका सहर्ष स्वागत करते हुए कहा कि यह साल सच में मिशनरी मील के पत्थरों से भरा है। यह साल संत पापा पियूस 11वें द्वारा अक्टूबर के आखिरी से पहले वाले रविवार को विश्व मिशन रविवार के तौर पर मनाने की 100वीं सालगिरह मनाई है, जिसे धर्म के प्रचार के लिए गठित पोंटिफिकल संस्था के अनुरोध पर शुरू किया गया था। 100 सालों से यह दिन प्रार्थना, मनन, चिंतन और कलीसिया के सुसमाचार प्रचार के मिशन में योगदान देने के लिए अलग रखा गया है, खासकर उन इलाकों में जहां सुसमाचार की घोषणा अभी शुरू ही हुई है और जहां कलीसिया अभी नई है। इस दिन हर कैथोलिक समुदाय को प्रार्थना करने और पहले सुसमाचार प्रचार के इलाकों में मिशनरी कोशिशों और नई कलीसियाओं के समर्थन के लिए आध्यात्मिक और आर्थिक सहायता देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। विश्व मिशन रविवार के दिन जमा हुए फंड की वजह से धर्म के प्रचार के लिए गठित पोंटिफिकल संस्था 1130 से ज्यादा कलीसिया के इलाकों को जरूरी मदद दे पा रही है। इससे उन्हें जरूरी गिरजाघरों को बनाने और अलग अलग मिशनरी कामों में मदद मिल रही है। वे रोम में स्थित 5 कॉलेजों के प्रबंधन को भी समर्थन देते हैं, ताकि पुरोहितों, धर्म बहनों और धर्म बंधुओं को लगातार ट्रेनिंग दी जा सके, जो पढ़ाई के लिए रोम शहर आते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी स्थानीय कलीसियाओं में वापस जाते हैं, जहां वे अपना कीमती योगदान देते हैं। फिर संत पापा ने कहा कि इस साल धन्या पाओलो मान्ना द्वारा पोंटिफिकल मिशन यूनियन की स्थापना की 100वीं सालगिरह भी है, जिसे संत पापा पियूस 12वें ने पोंटिफिकल घोषित किया था और संत पापा पॉल षष्ठम ने इसे दूसरी पोंटिफिकल मिशन संस्थाओं की आत्मा बताया था। संत पापा ने सभी को इसके मिशन में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद संत पापा ने खुशी के साथ अमेरिका में पोंटिफिकल मिशन संस्थाओं के जाने माने राष्ट्रीय निदेशक आदरणीय महाधर्माध्यक्ष फुल्टन जे शीन को भी याद किया, जिन्हें इस साल 24 सितंबर को संत लुइस मिसौरी में धन्य घोषित किया जाएगा। महाधर्माध्यक्ष शीन विश्वास, उम्मीद और प्यार के एक प्रकाश थे, जो दशकों तक रेडियो और टेलीविजन मीडिया के जरिए चमकते रहे। उनके ब्रॉडकास्ट ने लाखों लोगों को सुसमाचार की उम्मीद से छुआ और उनकी कोशिशों और पहलों का नतीजा यह हुआ कि पहले सुसमाचार प्रचार वाले इलाकों में कलीसियाओं को बहुत ज्यादा आध्यात्मिक और आर्थिक मदद मिली। संत पापा ने कहा कि इस साल के विश्व मिशन दिवस की थीम मसीह में एक, मिशन में एकजुट, विश्वासियों की एकता पर जोर देती है और इस वैश्विक समारोह की 100वीं वर्षगांठ को दिखाती है। यह कलीसिया के सभी सदस्यों को मसीह में गहरी संगति और उनके प्यार की दिव्य मिशन में पूरी सहभागिता का आह्वान करता है। और संत पापा लियो ने विल्ला नाजरेथ समुदाय का वाटिकन में स्वागत किया और इसके सदस्यों को युवाओं को बौद्धिक, नैतिक और वित्तीय मदद देने के लिए प्रोत्साहित किया, जिन्हें विश्वास, पढ़ाई, व्यवसाय और जिंदगी के बीच, खासकर मन और आत्मा के बीच एकता पाने के लिए ज्ञान और मार्गदर्शन की जरूरत है। 80 साल पहले दूसरे विश्व युद्ध के बाद कार्डिनल डोमेनिको टार्डिनी ने रोम के उस समय के नए शहरी इलाके में उम्मीद की एक लैब के तौर पर विल्ला नाजरेथ की स्थापना की थी। दशकों बाद भी विल्ला नाजरेथ आस्था, संस्कृति और दान के बीच जरूरी बातचीत को बढ़ावा दे रहा है, खासकर सबसे जरूरतमंद युवाओं की सेवा में। 30 मई को अपनी सालगिरह मनाते हुए समुदाय ने कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन की अध्यक्षता में पवित्र मिसा समारोह मनाया। उसके बाद वाटिकन के आशीर्वाद भवन में संत पापा लियो 14वें से मुलाकात की। प्रतिभागियों का अभिवादन कर संत पापा लियो 14वें ने विल्ला नाजरेथ की शुरुआत को याद किया, जिसे उन लोगों को पढ़ाई के मौके देने के लिए बनाया गया था जो प्रतिभा और अच्छी नीयत से भरे

थे, लेकिन जिनके पास पढ़ाई का कोर्स करने के लिए जरूरी साधन नहीं था। संस्थापक समझते थे कि स्थायी शांति को बढ़ावा देने के लिए युवा लोगों को ऐसे नेता बनना जरूरी है जो अच्छा काम करें और उन्हें पारिवारिक जीवन, पढ़ाई, आराम और व्यावसायिक कार्यकलापों में सुसमाचार के मूल्यों को जीने के लिए सही साधन से लैस होना जरूरी है। संत पापा ने हाल के विश्व पत्र मानिफिका ह्यूमानिटास का भी जिक्र किया। इंसान को जो चीज बचाती है वह बढ़ी हुई आत्मनिर्भरता नहीं है, बल्कि एक ऐसा रिश्ता है जो आजाद करता है, एक ऐसा मेलजोल जो बदल देता है। और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें एक और बाबिल का मीनार नहीं बल्कि ईश्वर का शहर बनाना चाहिए, जिसे प्यार और दुनिया भर में भाईचारे का सहारा मिले। और शनिवार 30 मई की शाम को दुनिया भर के मुख्य मरियम तीर्थालयों में उपस्थित विश्वासियों के साथ मिलकर संत पापा लियो 14वें ने वाटिकन उद्यान के लूर्द ग्रोटो में रोजरी के आनंद के भेद की प्रार्थना की। खास तौर पर उन लोगों को याद किया जो युद्ध और हिंसा से प्रभावित इलाकों में रहते हैं। संत पापा ने वाटिकन उद्यान में मौजूद विश्वासियों और दुनिया भर से जुड़े सभी लोगों से कहा कि वे अपने दिलों को तैयार करें ताकि प्रार्थना के जरिए हम इतिहास की घटनाओं का मतलब समझ सकें और परमेश्वर की कृपा को हमें रास्ता दिखाते और संभालते हुए देख सकें। संत पापा ने जोर देकर कहा, शांति कोई सिद्धांत नहीं है जिसे लैब में टेस्ट किया जाए, ना ही कोई भोला भाला भ्रम है, ना ही कोई ऐसा मामला है जिसे सिर्फ अपने फायदे के लिए ही हासिल किया जाए, बल्कि इसे सच्चे दिल से खोजना चाहिए। यह रोज रोज की प्रतिबद्धता है। शांति न्याय और प्यार से आती है। यह वह तालमेल है जो परिवारों, लोगों, समुदायों और देश को एक साथ लाता है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: zamaski.
1: Spraszywaj się.
0: Oj, kamienia.

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विंटे।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए और लिम्बुस में उतरे,

0: अमृत होकर न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: दुख के भेद। पहला भेद, बारी में प्रभु यीशु की प्राण पीड़ा।
1: मतलब हमें दुख तकलीफ में मदद मिले। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख के दूसरा भेद, यीशु कोड़ों से मारे जाते हैं,
0: मतलब हमारे रिश्तेदारों की आत्मिक भलाई के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का तीसरा भेद, प्रभु यीशु को सर पर कांटों का मुकुट पहनाया जाता है।
0: मतलब हम दुख में ना कुरकुराएं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का चौथा भेद, प्रभु यीशु अपने कंधों पर भारी क्रूस उठाते हैं,
0: मतलब हमारा मरण पवित्र हो। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का पांचवा भेद, प्रभु येसु को क्रूस पर ठोंका जाता है,
0: मतलब शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नवियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर, कृपा कर।

मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत हम धर्माधर्शकों की 16वीं धर्म सभा एक सिनोडल कलिसिया एकता, सहभागिता और प्रेरिताई के अंतिम दस्तावेज पर अपनी चर्चा कर रहे हैं। सिनोडल कलिसिया के अंतिम दस्तावेज के भाग 5, जिसका शीर्षक है अतः मैं तुम्हें भेजता हूँ, की शुरुआत करते हुए हमने अपने विगत प्रसारण के अंतिम भाग में कहा कि सिनोडालिटी का प्रशिक्षण और कलिसिया की सिनोडल शैली लोगों में इस बात की सचेतना लाती है कि बपतिस्मा में मिले उपहारों को हमें सबों के लिए उपयोग में लाने की जरूरत है। वे अपने में गुप्त या छुपे हुए नहीं रह सकते हैं। श्रोताओ, प्रेरितिक शिष्यों का प्रशिक्षण ख्रिस्तीय बपतिस्मा संस्कार में शुरू होता है और उनमें बना रहता है। हर व्यक्ति के विश्वास की यात्रा में हम बहुत से लोगों, समूहों और छोटे समुदायों से मिलन को पाते हैं, जो उन्हें ईश्वर के संग संबंध पोषित करने में और कलिसियाई एकता से उनका परिचय कराता है। माता पिता और परिवार के सदस्यगण, दादा दादी, धर्म शिक्षक और प्रचारक, धर्म विधि के अगुवे और वे जो करुणा के कार्यों में मदद करते हैं, उपयाजक, पुरोहितगण और स्वयं धर्माध्यक्ष। कभी कभी बपतिस्मा की धर्म विधि के एक बार समाप्त हो जाने पर समुदाय के संग संबंध कमजोर होने लगता है और प्रशिक्षण की अवहेलना होती है। यद्यपि ऐसा कुछ नहीं है, हम एक बार हमेशा के लिए यीशु ख्रीस्त के शिष्य नहीं बनते हैं। यह हमसे निरंतर परिवर्तन की मांग करता है, प्रेम में बढ़ने की, जब तक हम मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त ना कर लें और पवित्र आत्मा के उपहारों के लिए खुला होते हुए, जिससे हम आनंद और जीवंत विश्वास का साक्ष्य दे सकें। यही कारण है कि हमें इस बात की पुनः खोज करने की आवश्यकता है कि रविवारीय ख्रिस्त्याग कैसे हमारा निर्माण करता है, हमारे निर्माण का विस्तार यीशु ख्रिस्त के अनुरूप हो। यह अमूर्त मानसिक प्रक्रिया के रूप में ना हो, बल्कि उनमें हमारा एक होना हो। बहुत से विश्वासियों के लिए केवल रविवार ये यूखरिस्ट कलिसिया के संग जुड़े रहने का एक माध्यम बनती है। वे इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि उसे विशेष रूप में अर्पित किया जाता हो, खास रूप से प्रवचन पर ध्यान देते हुए और हर एक की सक्रिय सहभागिता के द्वारा, जो उसे सिनोडालिटी का स्वरूप बनाता है। मिस्सा बलिदान में हम सिनोडालिटी का अनुभव करते हैं, जो कलिसिया के द्वारा हमारे जीवन में कृपा स्वरूप ऊपर से आती है, जिसे हम ग्रहण करते हैं। यहाँ हमारे लिए सिनोडालिटी हमारे प्रयासों के फलस्वरूप होता है। हम किसी एक के नेतृत्व हेतु और कुछ एक लोगों की प्रेरिताई के लिए कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सभी कोई दो आयामी मेज, वचन और रोटी के भागीदार होते हैं। एकता, प्रेरिताई और सहभागिता का उपहार, जो सिनोडालिटी के तीन मुख्य बिंदु हैं, जिसे हम हर यूखरिस्त में अनुभव और नवीन होता पाते हैं। श्रोताओं, एक निवेदन जो सिनोडल प्रक्रिया के दौरान मजबूत रूप में सभी संदर्भों से उभर कर निकला, जो यह था कि ख्रिस्तीय समुदाय के द्वारा दिए जाने वाला प्रशिक्षण अपने में समग्र, निरंतर और साझा करने वाला हो। ऐसा प्रशिक्षण सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही सीमित ना हो, बल्कि यह खुलेपन और मिलन, साझा और सहयोग, चिंतन और सामान्य रूप में आत्म परीक्षण की योग्यता को भी प्रोत्साहित करता हो। इसके परिणाम स्वरूप प्रशिक्षण को चाहिए कि वह मानव जीवन के सभी आयामों, बौद्धिक, भावनात्मक, संबंधपूर्ण और आध्यात्मिकता को समाहित करे और ठोस अनुभवों को भी अपने में संलग्न करे, जो उचित रूप में साथ साथ चलते हैं। पूरे धर्म सभा के सिनोडल प्रक्रिया में इस बात पर भी जोर दिया गया था कि हमें एक सामुदायिक और साझा प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जिसमें नर और नारियां, लोक धर्मी समर्पित जीवन के लोग, अभिषिक्त, प्रेरित और पुरोहिताई के उम्मीदवार शामिल हों, जिससे वे पारस्परिक रूप में ज्ञान और सम्मान में बढ़ते हुए आपसी सहयोग कर सकें। यह हमारे लिए उपयुक्त और सक्षम प्रशिक्षण दाताओं की मांग करती है, जो अपने जीवन के द्वारा उन बातों का साक्ष्य प्रस्तुत करने के योग्य होते हैं, जिनकी शिक्षा वे अपने वचनों के द्वारा देते हैं। केवल ऐसा करने के द्वारा हम प्रशिक्षण को सही अर्थ में फलहित होने और उसे परिवर्तित करने वाला पाएंगे। हमें अनुशासन युक्त शिक्षा के उस योगदान, वयस्कों में सीखने के स्वरूप, शिक्षण के तौर तरीके और व्यक्तिगत तथा समुदायों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, जो हमारे लिए बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। अतः हमें चाहिए कि हम प्रशिक्षु और प्रशिक्षण पर व्यय करें। श्रोताओं, कलीसिया के पास प्रेरितिक शिष्यों के प्रशिक्षण के लिए पहले से ही बहुत से स्थल और संसाधन हैं। परिवारें, छोटे समुदाय, पल्लियां, कलीसियाई संगठने, लघु गुरुकुल और धर्म संघ के समुदाय, शैक्षणिक संस्थान और इसके साथ ही हाशिए पर रहने वालों के लिए कार्य और सेवा करने के स्थल, इसके अलावे प्रेरिताई और स्वयं सेवी पहले। इनमें से हर स्थल में समुदाय अपने साक्ष्य के माध्यम शिष्यों के प्रशिक्षण और उनका साथ देने में अपनी योग्यता को प्रकट करती है। यह मिलन बहुत बार विभिन्न पीढ़ियों के लोगों को एक साथ लाती है, अति युवाओं से लेकर अति बुजुर्गों को कलीसिया में किसी का यूं ही प्रशिक्षण नहीं होता है। हर कोई अपने में एक सक्रिय विषय वस्तु है और वह अपनी ओर से दूसरों को कुछ दे सकता है। लोकप्रिय धर्माचरण भी अपने में कलीसिया की एक मूल्यवान निधि है, जो ईश प्रजा को अपनी यात्रा में शिक्षित करती है। श्रोताओं, प्रशिक्षण के कार्य प्रणाली जिसके द्वारा सिनोडालिटी के नए उत्साह को लाभ प्राप्त होता है, हमें चाहिए कि हम धर्म शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। इसके साथ ही दीक्षांत की यात्रा में धर्म शिक्षा सदैव प्रेरिताई की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कराती है। प्रेरिताई हेतु शिष्यों के समुदाय को इस बात का ज्ञान है कि करुणा की निशानी और हर व्यक्ति के जीवन के अनुभवों के आधार पर धर्म शिक्षा का अनुपालन कैसे किया जा सकता है। कलीसिया की धर्म शिक्षा का सार को खोए बिना इसे अस्तित्वगत परिधि तक कैसे ले जाया जाता है। इस भांति यह हमारे समय के नर और नारियों के लिए एक वार्ता का प्रयोगशाला बनता और उन्हें जीवन के अर्थ को खोजने में प्रकाशित करता है। बहुत से कलीसियाओं में धर्म शिक्षा सहचर्य और प्रशिक्षण के लिए मूलभूत साधन है, वहीं दूसरों में उनकी सेवा की हमें प्रशंसा और समुदायों के द्वारा सहयोग किया जाना चाहिए। हमें चाहिए कि हम प्रतिनिधित्व के तर्क से अपने को दूर रखें, जो सिनोडालिटी के विरुद्ध है। इंसानों के प्रवासन की घटनाओं के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी है कि धर्म शिक्षा शुरुआती कलीसियाओं और उसके उद्देश्यों के संबंध में आपसी जान पहचान के रिश्तों को गहरा बनाने में बढ़ावा दे। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत धर्माधीक्षकों की 16वीं धर्म सभा, एक सिनोडल कलीसिया, एकता, सहभागिता और प्रेरिताई के अंतिम दस्तावेज पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने विश्व स्वास्थ्य संघ के ताइपेई घोषणा में बदलाव करने वाले विशेषज्ञों से स्वास्थ्य डेटाबेस और बायो बैंक के लिए नैतिक सुरक्षा को मजबूत करने की अपील की और तेजी से बदलती तकनीकी के युग में मानव गरिमा की सुरक्षा पर जोर दिया। संत पापा लियो 14वें ने लोगों को गलत डेटा तक सीमित करने के खिलाफ चेतावनी दी और ऐसी नीतियां बनाने की अपील की जो प्राइवेसी और आम भलाई दोनों को बढ़ावा दे। 1 जून का यह संदेश विश्व स्वास्थ्य संघ के ताइपेई घोषणा में बदलाव पर तीसरी विशेषज्ञों की मीटिंग में हिस्सा लेने वालों को भेजा गया था। इसमें संत पापा ने तेजी से हो रहे तकनीकी के विकास से पैदा हुई जरूरी नैतिक चुनौतियों पर ध्यान दिया। अपने विश्व पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास का जिक्र करते हुए संत पापा ने कहा कि आज का समाज, जिसे उन्होंने उपनिवेशवाद का नया रूप बताया, उसका सामना कर रहा है जो व्यक्तिगत जिंदगी को ऐसे डेटा में बदलना चाहता है जिसका इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने चेतावनी दी कि तकनीकी के लगातार विकास ने एकांत और सुरक्षा संरक्षण में बदलाव और उन्हें मजबूत करना एक बहुत जरूरी काम बना दिया है। संत पापा लियो ने इस बात पर जोर दिया कि हर इंसान की अंदरूनी गरिमा होती है, जिसे सिर्फ जानकारी या कमर्शियल वैल्यू तक कम नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने संदेश में कहा, ईश्वर की छवि और समानता में बनाया गया हर इंसान एक ऐसा अनोखा और अनमोल इंसान है जिसकी कीमत कम नहीं की जा सकती। इसी वजह से उन्होंने आगे कहा, समाज को ऐसे शोषण और कॉमर्शियलाइजेशन से बचना चाहिए जो लोगों को सिर्फ डेटा का कलेक्शन समझते हैं। मीटिंग में भाग लेने वालों का हौसला बढ़ाते हुए संत पापा लियो ने उम्मीद जताई कि ताइपेई का बदला हुआ डिक्लरेशन आम भलाई के लिए ज्ञान को जिम्मेदारी से साझा करने को बढ़ावा देते हुए मानव गरिमा को बनाए रखेगा। उन्होंने कहा, मानव का सम्मान और साझा किए गए ज्ञान को आगे बढ़ाना ही नैतिक मेडिकल रिसर्च और हेल्थ केयर पॉलिसी की नींव बना रहना चाहिए। और संत पापा लियो 14वें ने मारिया मोंटेसेरात अल्वारादो को, जो अभी EWTN न्यूज यानी इटर्नल वर्ल्ड टेलीविजन नेटवर्क न्यूज की अध्यक्ष और प्रधान परिचालन अधिकारी हैं, को 1 नवंबर 2026 से संचार विभाग का प्रीफेक्ट नियुक्त किया है। मेक्सिको सिटी में जन्मी अल्वारादो ने फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से अकादमिक डिग्री हासिल की। 2009 से 2023 तक उन्होंने बेकेट फंड फॉर रिलीजियस लिबर्टी की अगुवाई की, जहां उन्होंने धार्मिक आज़ादी की रक्षा और मानव गरिमा को बढ़ावा देने के लिए काम किया। 2023 से वे EWTN न्यूज की अध्यक्ष और प्रधान परिचालन अधिकारी के तौर पर काम कर रही हैं, जो इटर्नल वर्ल्ड टेलीविजन नेटवर्क का न्यूज डिवीजन है और टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट, डिजिटल और सोशल मीडिया पर 7 भाषाओं में सामग्री बनाने वाले इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखती हैं। अल्वारादो की नियुक्ति के साथ संत पापा लियो 14वें संत पापा फ्रांसिस द्वारा शुरू किए गए रोमन कूरिया में सुधार और नवीनीकरण के रास्ते को जारी रखेंगे, जिसमें आम लोगों, पुरुषों और महिलाओं को विश्वव्यापी कलीसिया की सेवा में नेतृत्व और जिम्मेदारी के पद दिए गए हैं। अल्वारादो पहली लोकधर्मी महिला हैं जिन्हें परम धर्मपीठ के विभाग का प्रीफेक्ट नियुक्त किया गया है। उधर स्विट्जरलैंड के धर्माध्यक्षों को उनकी आम सभा के मौके पर भेजे गए एक वीडियो संदेश में कार्डिनल माइकल चेरनी ने 25 मई को प्रकाशित

पत्रक के महत्व पर केंद्रित था। कार्डिनल चेरनी ने हाल ही में संत पापा द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े काम को कोऑर्डिनेट करने के लिए बनाए गए पोंटिफिकल कमीशन पर भी बात की, जिसे विभाग की अगुवाई में सौंपा गया था। उन्होंने कहा, शुरू से ही एक जरूरी सवाल हमारे सामने आता है, यह नया कमीशन स्थानीय कलीसियाओं के साथ बातचीत कैसे कर सकता है, उनका साथ कैसे दे सकता है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण आज पैदा हो रही चुनौतियों और समझदारी से निपटने में उनका समर्थन कैसे कर सकता है। कार्डिनल चेरनी ने आगे कहा, संत पापा फ्रांसिस ने मुझे जो सबसे बड़ी सीख दी थी वह यह थी, असलियत से मत डरो। उन्होंने कहा कि समय के साथ उन्हें समझ में आया कि हम सभी को कितनी जोर से लुभाया जा सकता है। मैं और कलीसिया में कई दूसरे लोग भी खुद को असलियत से बचाने के लिए या कभी कभी अलग अलग तरीकों से खुद को उससे दूर रखने के लिए। उन्होंने कहा कि मैनिफिका हुमानितास का प्रकाशन असलियत से जुड़ने की कोशिश करता है, कलीसिया के सामाजिक सिद्धांत के महान नींव और सिद्धांतों को जोरदार तरीके से दोहराकर यह विश्व पत्र हमें कई चुनौतियों को पहचानने, समझने, उसका मतलब निकालने और अंत में उसका सामना करने में मदद करता है, न केवल कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी चुनौतियों को जो हमारी इंसानियत के लिए खतरा है, पूरे मानव विकास में गंभीर रुकावटें खड़ी करती हैं। उधर होर्मुज में एक और तनाव, कुवैत को ड्रोन से निशाना बनाया गया। अमेरिका ने कहा कि उसने सप्ताहांत में ईरानी मिलिट्री साइट्स पर हमला किया, जबकि तेहरान ने दावा किया कि उसने जवाब में एक अमेरिकी बेस को निशाना बनाया, जो होर्मुज स्ट्रेट के आसपास एक हफ्ते में तीसरी बार हुआ है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने ईरानी एक्शन के बाद सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पानी के ऊपर एक अमेरिकी ड्रोन को गिराना भी शामिल था। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज, एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत हम धर्माधर्शकों की 16वीं धर्म सभा, एक सिनोडल कलिसिया, एकता, सहभागिता और प्रेरिताई के अंतिम दस्तावेज पर अपनी चर्चा कर रहे हैं। सिनोडल कलिसिया के अंतिम दस्तावेज के भाग 5, जिसका शीर्षक है अतः मैं तुम्हें भेजता हूँ, की शुरुआत करते हुए हमने अपने विगत प्रसारण के अंतिम भाग में कहा कि सिनोडालिटी का प्रशिक्षण और कलिसिया की सिनोडल शैली लोगों में इस बात की सचेतना लाती है कि बपतिस्मा में मिले उपहारों को हमें सबों के लिए उपयोग में लाने की जरूरत है, वे अपने में गुप्त या छुपे हुए नहीं रह सकते हैं। श्रोताओं, प्रेरितिक शिष्यों का प्रशिक्षण ख्रिस्तीय बपतिस्मा संस्कार में शुरू होता है और उनमें बना रहता है। हर व्यक्ति के विश्वास की यात्रा में हम बहुत से लोगों, समूहों और छोटे समुदायों से मिलन को पाते हैं, जो उन्हें ईश्वर के संग संबंध पोषित करने में और कलिसियाई एकता से उनका परिचय कराता है। माता पिता और परिवार के सदस्यगण, दादा दादी, धर्म शिक्षक और प्रचारक, धर्म विधि के अगुवे और वे जो करुणा के कार्यों में मदद करते हैं, उपयाजक, पुरोहितगण और स्वयं धर्माध्यक्ष। कभी कभी बपतिस्मा की धर्म विधि के एक बार समाप्त हो जाने पर समुदाय के संग संबंध कमजोर होने लगता है और प्रशिक्षण की अवहेलना होती है। यद्यपि ऐसा कुछ नहीं है, हम एक बार हमेशा के लिए यीशु ख्रिस्त के शिष्य नहीं बनते हैं। यह हमसे निरंतर परिवर्तन की मांग करता है, प्रेम में बढ़ने की, जब तक हम मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त ना कर लें और पवित्र आत्मा के उपहारों के लिए खुला होते हुए, जिससे हम आनंद और जीवंत विश्वास का साक्ष्य दे सकें। यही कारण है कि हमें इस बात की पुनः खोज करने की आवश्यकता है कि रविवार ये ख्रिस्त्याग कैसे हमारा निर्माण करता है। हमारे निर्माण का विस्तार यीशु ख्रिस्त के अनुरूप हो, यह अमूर्त मानसिक प्रक्रिया के रूप में ना हो, बल्कि उनमें हमारा एक होना हो। बहुत से विश्वासियों के लिए केवल रविवार ये यूखरिस्त कलिसिया के संग जुड़े रहने का एक माध्यम बनती है। वे इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि उसे विशेष रूप में अर्पित किया जाता हो, खास रूप से प्रवचन पर ध्यान देते हुए और हर एक की सक्रिय सहभागिता के द्वारा, जो उसे सिनोडालिटी का स्वरूप बनाता है। मिस्सा बलिदान में हम सिनोडालिटी का अनुभव करते हैं, जो कलिसिया के द्वारा हमारे जीवन में कृपा स्वरूप ऊपर से आती है, जिसे हम ग्रहण करते हैं। यहाँ हमारे लिए सिनोडालिटी हमारे प्रयासों के फलस्वरूप होता है। हम किसी एक के नेतृत्व हेतु और कुछ एक लोगों की प्रेरिताई के लिए कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सभी कोई दो आयामी मेज, वचन और रोटी के भागीदार होते हैं। एकता, प्रेरिताई और सहभागिता का उपहार, जो सिनोडालिटी के 3 मुख्य बिंदु हैं, जिसे हम हर यूखरिस्त में अनुभव और नवीन होता पाते हैं। श्रोताओं, एक निवेदन जो सिनोडल प्रक्रिया के दौरान मजबूत रूप में सभी संदर्भों से उभर कर निकला, जो यह था कि ख्रिस्तीय समुदाय के द्वारा दिए जाने वाला प्रशिक्षण अपने में समग्र, निरंतर और साझा करने वाला हो। ऐसा प्रशिक्षण सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही सीमित ना हो, बल्कि यह खुलेपन और मिलन, साझा और सहयोग, चिंतन और सामान्य रूप में आत्म परीक्षण की योग्यता को भी प्रोत्साहित करता हो। इसके परिणाम स्वरूप प्रशिक्षण को चाहिए कि वह मानव जीवन के सभी आयामों, बौद्धिक, भावनात्मक, संबंधपूर्ण और आध्यात्मिकता को समाहित करे और ठोस अनुभवों को भी अपने में संलग्न करे, जो उचित रूप में साथ साथ चलते हैं। पूरे धर्म सभा के सिनोडल प्रक्रिया में इस बात पर भी जोर दिया गया था कि हमें एक सामुदायिक और साझा प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जिसमें नर और नारियां, लोक धर्मी समर्पित जीवन के लोग, अभिषिक्त, प्रेरित और पुरोहिताई के उम्मीदवार शामिल हों, जिससे वे पारस्परिक रूप में ज्ञान और सम्मान में बढ़ते हुए आपसी सहयोग कर सकें। यह हमारे लिए उपयुक्त और सक्षम प्रशिक्षण दाताओं की मांग करती है, जो अपने जीवन के द्वारा उन बातों का साक्ष्य प्रस्तुत करने के योग्य होते हैं, जिनकी शिक्षा वे अपने वचनों के द्वारा देते हैं। केवल ऐसा करने के द्वारा हम प्रशिक्षण को सही अर्थ में फलहित होने और उसे परिवर्तित करने वाला पाएंगे। हमें अनुशासन युक्त शिक्षा के उस योगदान, वयस्कों में सीखने के स्वरूप, शिक्षण के तौर तरीके और व्यक्तिगत तथा समुदायों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, जो हमारे लिए बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। अतः हमें चाहिए कि हम प्रशिक्षु और प्रशिक्षण पर व्यय करें। श्रोताओं, कलीसिया के पास प्रेरितिक शिष्यों के प्रशिक्षण के लिए पहले से ही बहुत से स्थल और संसाधन हैं। परिवारें, छोटे समुदाय, पल्लियां, कलीसियाई संगठने, लघु गुरुकुल और धर्म संघ के समुदाय, शैक्षणिक संस्थान और इसके साथ ही हाशिए पर रहने वालों के लिए कार्य और सेवा करने के स्थल, इसके अलावे प्रेरिताई और स्वयं सेवी पहले, इनमें से हर स्थल में समुदाय अपने साक्ष्य के माध्यम शिष्यों के प्रशिक्षण और उनका साथ देने में अपनी योग्यता को प्रकट करती है। यह मिलन बहुत बार विभिन्न पीढ़ियों के लोगों को एक साथ लाती है, अति युवाओं से लेकर अति बुजुर्गों को कलीसिया में किसी का यूं ही प्रशिक्षण नहीं होता है। हर कोई अपने में एक सक्रिय विषय वस्तु है और वह अपनी ओर से दूसरों को कुछ दे सकता है। लोकप्रिय धर्माचरण भी अपने में कलीसिया की एक मूल्यवान निधि है, जो ईश प्रजा को अपनी यात्रा में शिक्षित करती है। श्रोताओं, प्रशिक्षण के कार्य प्रणाली जिसके द्वारा सिनोडालिटी के नए उत्साह को लाभ प्राप्त होता है, हमें चाहिए कि हम धर्म शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। इसके साथ ही दीक्षांत की यात्रा में धर्म शिक्षा सदैव प्रेरिताई की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कराती है। प्रेरिताई हेतु शिष्यों के समुदाय को इस बात का ज्ञान है कि करुणा की निशानी और हर व्यक्ति के जीवन के अनुभवों के आधार पर धर्म शिक्षा का अनुपालन कैसे किया जा सकता है। कलीसिया की धर्म शिक्षा का सार को खोए बिना इसे अस्तित्वगत परिधि तक कैसे ले जाया जाता है। इस भांति यह हमारे समय के नर और नारियों के लिए एक वार्ता का प्रयोगशाला बनता और उन्हें जीवन के अर्थ को खोजने में प्रकाशित करता है। बहुत से कलीसियाओं में धर्म शिक्षा सहचर्य और प्रशिक्षण के लिए मूलभूत साधन है, वहीं दूसरों में उनकी सेवा की हमें प्रशंसा और समुदायों के द्वारा सहयोग किया जाना चाहिए। हमें चाहिए कि हम प्रतिनिधित्व के तर्क से अपने को दूर रखें, जो सिनोडालिटी के विरुद्ध है। इंसानों के प्रवासन की घटनाओं के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी है कि धर्म शिक्षा शुरुआती कलीसियाओं और उसके उद्देश्यों के संबंध में आपसी जान पहचान के रिश्तों को गहरा बनाने में बढ़ावा दे। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत धर्माधीक्षकों की 16वीं धर्म सभा, एक सिनोडल कलीसिया, एकता, सहभागिता और प्रेरिताई के अंतिम दस्तावेज पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने विश्व स्वास्थ्य संघ के ताइपेई घोषणा में बदलाव करने वाले विशेषज्ञों से स्वास्थ्य डेटाबेस और बायो बैंक के लिए नैतिक सुरक्षा को मजबूत करने की अपील की और तेजी से बदलती तकनीकी के युग में मानव गरिमा की सुरक्षा पर जोर दिया। संत पापा लियो 14वें ने लोगों को गलत डेटा तक सीमित करने के खिलाफ चेतावनी दी और ऐसी नीतियां बनाने की अपील की जो प्राइवेसी और आम भलाई दोनों को बढ़ावा दे। 1 जून का यह संदेश विश्व स्वास्थ्य संघ के ताइपेई घोषणा में बदलाव पर तीसरी विशेषज्ञों की मीटिंग में हिस्सा लेने वालों को भेजा गया था। इसमें संत पापा ने तेजी से हो रहे तकनीकी के विकास से पैदा हुई जरूरी नैतिक चुनौतियों पर ध्यान दिया। अपने विश्व पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास का जिक्र करते हुए संत पापा ने कहा कि आज का समाज, जिसे उन्होंने उपनिवेशवाद का नया रूप बताया, उसका सामना कर रहा है जो व्यक्तिगत जिंदगी को ऐसे डेटा में बदलना चाहता है जिसका इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने चेतावनी दी कि तकनीकी के लगातार विकास ने एकांत और सुरक्षा संरक्षण में बदलाव और उन्हें मजबूत करना एक बहुत जरूरी काम बना दिया है। संत पापा लियो ने इस बात पर जोर दिया कि हर इंसान की अंदरूनी गरिमा होती है, जिसे सिर्फ जानकारी या कमर्शियल वैल्यू तक कम नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने संदेश में कहा, ईश्वर की छवि और समानता में बनाया गया हर इंसान एक ऐसा अनोखा और अनमोल इंसान है जिसकी कीमत कम नहीं की जा सकती। इसी वजह से उन्होंने आगे कहा, समाज को ऐसे शोषण और कमर्शियलाइजेशन से बचना चाहिए जो लोगों को सिर्फ डेटा का कलेक्शन समझते हैं। मीटिंग में भाग लेने वालों का हौसला बढ़ाते हुए संत पापा लियो ने उम्मीद जताई कि ताइपेई का बदला हुआ डिक्लरेशन आम भलाई के लिए ज्ञान को जिम्मेदारी से साझा करने को बढ़ावा देते हुए मानव गरिमा को बनाए रखेगा। उन्होंने कहा, मानव का सम्मान और साझा किए गए ज्ञान को आगे बढ़ाना ही नैतिक मेडिकल रिसर्च और हेल्थ केयर पॉलिसी की नींव बना रहना चाहिए। और संत पापा लियो 14वें ने मारिया मोंटेसेरात अल्वारादो को, जो अभी EWTN न्यूज यानी इटर्नल वर्ल्ड टेलीविजन नेटवर्क न्यूज की अध्यक्ष और प्रधान परिचालन अधिकारी हैं, को 1 नवंबर 2026 से संचार विभाग का प्रीफेक्ट नियुक्त किया है। मेक्सिको सिटी में जन्मी अल्वारादो ने फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से अकादमिक डिग्री हासिल की। 2009 से 2023 तक उन्होंने बेकेट फंड फॉर रिलीजियस लिबर्टी की अगुवाई की, जहां उन्होंने धार्मिक आजादी की रक्षा और मानव गरिमा को बढ़ावा देने के लिए काम किया। 2023 से वे EWTN न्यूज की अध्यक्ष और प्रधान परिचालन अधिकारी के तौर पर काम कर रही हैं, जो इटर्नल वर्ल्ड टेलीविजन नेटवर्क का न्यूज डिवीजन है और टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट, डिजिटल और सोशल मीडिया पर 7 भाषाओं में सामग्री बनाने वाले इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखती हैं। अल्वारादो की नियुक्ति के साथ संत पापा लियो 14वें संत पापा फ्रांसिस द्वारा शुरू किए गए रोमन कूरिया में सुधार और नवीनीकरण के रास्ते को जारी रखेंगे, जिसमें आम लोगों, पुरुषों और महिलाओं को विश्वव्यापी कलीसिया की सेवा में नेतृत्व और जिम्मेदारी के पद दिए गए हैं। अल्वारादो पहली लोकधर्मी महिला हैं जिन्हें परम धर्म पीठ के विभाग का प्रीफेक्ट नियुक्त किया गया है। उधर स्विट्जरलैंड के धर्माध्यक्षों को उनकी आम सभा के मौके पर भेजे गए एक वीडियो संदेश में कार्डिनल माइकल चेरनी ने 25 मई को प्रकाशित हुए संत पापा लियो 14वें के विश्व पत्र के महत्व पर बात की और बताया कि यह दस्तावेज हमें अपनी संरचना, काम करने के तरीकों और सुसमाचार प्रचार के प्रति हमारे दृष्टिकोण को जांचने की चुनौती देता है। अभिन्न मानव विकास को बढ़ावा देने वाले विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल माइकल चेरनी के खुद आइंसिडेन आबे में जाने की उम्मीद थी, लेकिन वाटिकन के कुछ जरूरी काम की वजह से वे यात्रा नहीं कर पाए। स्विस धर्माध्यक्षों को दिए गए अपने संदेश में 25 मई को प्रकाशित संत पापा लियो 14वें के विश्व पत्र के महत्व पर केंद्रित था।
कार्डिनल चेरनी ने हाल ही में संत पापा द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े काम को कोऑर्डिनेट करने के लिए बनाए गए पोंटिफिकल कमीशन पर भी बात की, जिसे विभाग की अगुवाई में सौंपा गया था। उन्होंने कहा, शुरू से ही एक जरूरी सवाल हमारे सामने आता है, यह नया कमीशन स्थानीय कलीसियाओं के साथ बातचीत कैसे कर सकता है, उनका साथ कैसे दे सकता है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण आज पैदा हो रही चुनौतियों और समझदारी से निपटने में उनका समर्थन कैसे कर सकता है। कार्डिनल चेरनी ने आगे कहा, संत पापा फ्रांसिस ने मुझे जो सबसे बड़ी सीख दी थी वह यह थी, असलियत से मत डरो। उन्होंने कहा कि समय के साथ उन्हें समझ में आया कि हम सभी को कितनी जोर से लुभाया जा सकता है। मैं और कलीसिया में कई दूसरे लोग भी खुद को असलियत से बचाने के लिए या कभी कभी अलग अलग तरीकों से खुद को उससे दूर रखने के लिए। उन्होंने कहा कि मैनिफिका हुमानितास का प्रकाशन असलियत से जुड़ने की कोशिश करता है, कलीसिया के सामाजिक सिद्धांत के महान नींव और सिद्धांतों को जोरदार तरीके से दोहराकर यह विश्व पत्र हमें कई चुनौतियों को पहचानने, समझने, उसका मतलब निकालने और अंत में उसका सामना करने में मदद करता है, न केवल कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी चुनौतियों को जो हमारी इंसानियत के लिए खतरा है, पूरे मानव विकास में गंभीर रुकावटें खड़ी करती हैं। उधर होर्मुज में एक और तनाव, कुवैत को ड्रोन से निशाना बनाया गया। अमेरिका ने कहा कि उसने सप्ताहांत में ईरानी मिलिट्री साइट्स पर हमला किया, जबकि तेहरान ने दावा किया कि उसने जवाब में एक अमेरिकी बेस को निशाना बनाया, जो होर्मुज स्ट्रेट के आसपास एक हफ्ते में तीसरी बार हुआ है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने ईरानी एक्शन के बाद सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पानी के ऊपर एक अमेरिकी ड्रोन को गिराना भी शामिल था। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।